ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, नाहिन निर्मल करनी, साध संगत कै अंचल लाभ, बिखम नदी जाहि तरनी, अंतर जामी पुरख विदाते, श्रद्धा मन की पूरे, नानक दास एह सुख मांगे, मोको कर संतन की तूरे, जिनके चोले रतड़े प्यारे, कंत तिना कै पास, धूड़ तिना की जे मिल जी, कहो नानक की अरदास, दंडौत बंदन अनक बार, सर्व कला समरथ, डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हाथ, डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हाथ। परम सत्कारयोग धन धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र चरणा च गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब पवित्र स्थान दियां हाजरियां भर रहे गुरु प्यारे सत संगी जनों सतगुरु महाराज की पावन हजूरी विच जुड़ बैठ अदब प्यार सत्कार दे नाल कीर्तन रूप विच गुरबाणी का लाहा प्राप्त किया है। लड़ीवार गुरबाणी शब्द विचार अज दे अमृतमई बचना दा पाठ भाई साहब जी पासो सरवण कीता। पवित्र बाणी दी विचार दे नाल जुड़न वास्ते जो समा प्राप्त हो रहा है मन बिरतियां नूं एकाग्र करदे होए निमाणे जी हो के समरथ सतगुरु जी दे पावन चरणा च जुड़न दा यतन करिए। सतगुरु जी अमृतमई बाणी दे राही मनुखी दुनियावी जीवां नूं जो समझाउणा चाहुंदे हन एक मन एक चित हो के समझण दा

संयम करें। बाहरों दिखावा कर रहे हैं, धर्म का कर्म कर रहे हैं, सुचे होने का दावा कर रहे हैं, संयम रखने का दावा कर रहे हैं कि मैं तो अपने इंद्रियां नू कंट्रोल कर लिया संयम। बाहरों धर्मी होने का दिखावा कर रहे हैं भी मैं धर्म के कर्म करदा, मैं सुचा, मेरा जीवन बड़ा उच्चा सुचा है और मैं अपने इंद्रियां नू काबू च कर लिया। अंतर की है? अंतर लोभ विकार सिर्फ दिखावा कर रहा है बाहर का धर्मी होने का। सानू महाराज ने कहा सी कि तैनू मैं सिख बनाउणा पर बाहरों दिखावे वाला नहीं बनाउणा, तैनू धर्मी बनाउणा पर दिखावे वाला नहीं। बाहरों दिखावे वाले तो गुरु नानक साहब वेले भी बहुत सी, कबीर साहब जी वेले भी बड़े सी, नामदेव जी वेले भी बड़े सी। जदों महाराज ने सिखी का मार्ग शुरू किया, आरंभिया मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया, वह जदों पंथ चलाया ना रस्ता, तो महाराज ने यह कहा भी एक गल ध्यान रखियो, मैं ये वो रस्ता बनाया जिथे अंदरों निर्मल होना है। दिखावे वाले तो पहले भी बहुत ने, मैं वो अंदरों तुहानू निर्मल करना है, तुहानू पवित्र करना है कि एक दिन तुसी खालस हो जाओ। सिख तो सिंह का सफर है, ये निर्मल पंथ तो खालसा पंथ का सफर है। महाराज कहिंदे आ मैं तैनू पवित्र पवित्र पवित्र करदा, तैनू पुनीत कर दिया ताकि तू खालस हो जाए। खालस खालसा रूप ता ही प्रगट किया महाराज ने भी तू अंदरों भी निर्मल ते बाहरों भी निर्मल हो जाए। इसलिए महाराज कहिंदे कर्म धर्म सुच संयम करें करदे ने अंतर लोभ विकार, पर अंदर मनमुख दे विकार ते लोभ जिहड़ा ओ

0: कृपा में सुख करे रे तुम्हारा अंत के क्या भगवंत तुमते हो सो आज्ञाकारी
1: तुम्हारी गत मित तुम ही

0: कै सिमरन काल पर हरे प्रभ कै सिमरन दुश्मन तरे
1: प्रभ सिमरत कज बिगड़ न लागे प्रभ कै सिमरन अनदिन जागे
0: प्रभ कै सिमरन भव न व्यापे प्रभ कै सिमरन दुख न संतापे
1: प्रभ का सिमरन साध के संग सर्व निदान नानक हर रंग
0: प्रभ कै सिमरन रिद्धि

0: सुतमीतना बाई मनुआ नाम तेरा संग साई।
1: जय मां बयान दूध जम दले ते केवल नाम संग तेरे चले।
0: जय मुश्किल होवे अत भारी हर को नाम की माही उदारी।
1: अपने चरण करतनी तरे हर को नाम कोट पाप पर हरे।
0: मुख नाम जपो मन मेरे नानक पाओ सुख गनेरे।
1: सगल शिष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जपत हो सुखिया।
0: करोरी बंदना पर हर का नाम जपत निस्तर।
1: माया रंग तक न बजावे हर का नाम जपते अगावे।
0: मार्ग जात अकेला तै हर नाम संगोत सुहेला।
1: ऐसा नाम सदाती ये नान गुरमुख प्रमुख तपाइये।
0: तक नहीं कोट लक बाही नाम जपत तै पार पराई।
1: नगद गंजे आए संगारे हर का नाम।

0: बल बल जाओ
1: रहत अवर कच अवर कमावत मन नहीं प्रीत मुखू गंड
0: जन हर प्रभु प्रवीण बार भीख ना कहूं पीन
1: उपदेश आप न करे आवत जावत जन्म मरे
0: जिसके अंतर बसे निरंकार किसकी सीख तरे संसार
1: तो तुम भाने तिन प्रभ जाता नानक उन जन चरण पराता
0: करो वेंती पार ब्रह्म सब जन ने अपना किया आपे मन
1: आप करत निबेरा किसे

0: मैं सम्मानी
1: साध का संग गोचर मिले साध का संग सदा पर फुले
0: साध संग आवे भस पंचा साध संग मृत रस पुंचा
1: साध संग ओ सब की रेन साध का संग मनोहर बहन
0: साध संग नकत हूँ

0: रस ब्रह्म ज्ञानी जींदा।
1: ब्रह्म ज्ञानी की सब परमया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न भया।
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत बरसी।
1: ब्रह्म ज्ञानी बंधन

0: कई कोट प्रको खोजन्ते आत्मे पारम लहन्ते
1: कई कोट दर्शन प्रप्यास तिनको मिलियो प्रप अविनाश
0: कई कोट मांगे सत्संग पारम तिन लागा रंग
1: जिनको होए आप सो प्रसन्न नानक ते जन सदा धन्य धन
0: कई कोट खाणी अर खंड कई कोट आकाश में मन
1: कई कोट होए अवतार कई जुगत इनो विस्तार
0: कई बार पस्यो पासार सदा सदा एक

0: संत का दोखी सदा सहकाई है, संत का दोखी न मरे न जीवाई है।
1: संत के दोखी की पुजे न आसा, संत का दोखी उठ चले निराशा।
0: संत के दोख न तिष्ठे कोई, जैसा भाव है तैसा कोई होए।
1: पया कीर्त न मिटे कोई, नानक जाने सच्चा सोई।
0: सब घट किसके ओ कर नेहार, सदा सदा तिसको नमस्कार।
1: ब्रह्म की उस्त करो दिन रात, से थे आव सास की रात।
0: सब कच वर्ता तिसका किया, जैसा करे तैसा कोथिया।
1: अपना खेल आप करने हार, दूसरे कौन कहे बीचा।

0: की भाषा।
1: पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक से न लागे दुख,
0: जिसको हर ब्रह्म मन चित आवे सो संत सोहेला नहीं डुलावे।
1: जिस प्रभु अपना कृपा करे सो सेवक को कसते डरे,
0: जैसा तैसा दृष्टाया अपने कारज में आप
1: समाया। सोद सोद सीजिया गुरु प्रसाद का सब बुझिया,
0: देखूं तब सब किस मूल नानक सो सुख।

0: नाम के धारे पुरिया सब भवन नाम के संग उतरे सुन श्रवण
1: कर कृपा जिसे अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जनगत पाए
0: रूप सत जाका सत स्थान।

0: भारवत
1: हे धन संचो वो भगवंत संत जना का निर्मल मंत
0: एक आस राखो मन माए सर्व रो नानक मिट जाहि
1: जिस धन को चार कुंट टूट दावे सो धन हर सेवा ते पावे
0: जिस कुण बाछेवी सो सुख साधु संग बरी
1: जिस शोभा को करे बलि करनी सा शोभा बजर की।

0: अंदर सिमन सदास पाओ।
1: गोविंद से पूरन होए आज भगत भाई आत्म परगास।
0: दिल कर जाए बसे अब नासी को नानक काटी जम फांसी।
1: सत विचार

0: विचारी
1: हर की भगत करो मन लाए मन बंचत नानक फल पाए
0: संग जाल तेरे तना तू क्या लपटावे मूर्ख मना
1: सुर मीत कुटंबर बनता इनते कहो तुम कवन सनाता
0: बारं माया विस्तार इनते कौन कौन छुटका
1: हस हस्ती रक्त सवारी झूठा

अनक कर है हर पूजा जी, तप ताप है जप है बेअंत, तेरे अनेक पढ़ है बहु सिमृत शास्त्र जी, कर क्रिया खड़।

ब्रह्मा गुण उच्चरै जिन हुकम सब सृष्ट सवारी ब्रह्मांड खंड पूरन ब्रह्म गुण निर्गुण सम जानेओ जप कल सुज